रख देना मेरी कब्र के पास, हाँ मेरे मरने के बाद मेरे पास इतनी सी खुराक होगी।